0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Lebanon mein jang ke khatme mein jo matlab Israel je kabze ke ilaqan ma nikrana hai, ibu rimaya to pehlo kadam hai jekde un te amal na kayo to atmi program te be galiyun na thindiyo.
6: अमेरिका ए ईरान उन माहदे की शुरुआती मतन से इतफा करे वरतो। वजीर आजम शहबाज शरीफ उन माहदे के मतन से अमेरिका ए ईरान के मुतफिक थे की तस्दीक कंदे अमन पे एतरो वेझो न हो जो हाने आए। अमन माहदे के नाकाम करण वारा साजिशी कदें भी कामयाब न थींदा।

0: एसटीपी लाइ 1,000 अरब रुपया मुख़्तस कया विया पर कर्ज़ जे व्याज भरण लाइ 8,054 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। दिफ़ा लाइ 3,000 अरब रुपया मुख़्तस। सूबे जो एनएफसी हिसो 8,478 अरब रुपया मुक़रर कयो वियो। क़ौमी तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 3,675 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक जे तरक़ियाती बजट लाइ 1,000 अरब ऐं सूबे जे तरक़ियाती बजट 2,224 अरब रुपया मुख़्तस।
1: जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन

0: तमाम पखंजे मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद। गिव्स लास्ट आवर
2: ब्लैक ब्यूटी
0: सोलर एंड बैटरी तक

0: वालो न झुकंदो। असांजी तलवार हमेशा आबना हुरमुस ते लटकियल रहंदी। लेबनान में जंग जे खात्मे जो मतलब इसराइल जे कब्ज़े कयल इलाइक़नि मां निकिरण आहे। इब्री मुआहिदो पहिरियों कदम आहे। जेकॾहिं हुन ते अमल न कयो वियो त एटमी प्रोग्राम ते बि ॻाल्हियूं न थींदियूं।
1: अमरीका ऐं ईरान अमन मुआहिदे जी शुरूआती मतन ते इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ अमन मुआहिदे जे मतन ते अमरीका ऐं ईरान जे मुतफ़िक़ थियण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त अमन पहिरियों एतिरो वेझो न हो जेतिरो हाणे आहे। अमन मुआहिदे खे नाकाम करण वारा साज़िशी कॾहिं बि कामयाब

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ಅದಬವಲೇ ಮಾನ ಭರ ಮುಖ ಸಾಂಗಿ ಯಾಮ ಸಕಾರ ಅದಬವಲೇ.

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: It's 10 AM. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News. Aap sun rahe the GFM Network par KTN News.
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुन
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
5: ईरान अमन मुआहदे की शुरुआती मदन से इतफाक करे वरतो। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमन मुआहदे के मत

अमरीका ईरान जे मुतफ़िक थियण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त अमन पहिरियों एतिरो वेझो न हो जेतिरो हाणे आहे। अमन मुआदे खे नाकाम करण वारा साज़िशी कडहिं बि कामयाब न थींदा।

0: लाख रुपए उनके टैक्स 20% 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान वाले तनख्वाहदारों के लिए 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपयों के लिए इनकम टैक्स की शरह 30% से कम कर 30% करने की तजवीज है। रुपए आमदना 35% से कम करके 32% करने की तजवीज है। सरकार तबके पर आय सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है।
1: नए माली साल के बजट में कुछ टैक्सेस में वाद है, कुछ में घटाई। सुपर टैक्स 10 में घटाए माली कुछ टैक्सेस में वाद है, कुछ में घटाई। सुपर टैक्स 10 में घटाए 8% कर छो। सालानो 15 से 50 करोड़ तई आमदनी के 6 स्लैब से सुपर टैक्स खत्म किया वो। 22 से 32 लाख सालानो कमाइंदड़ लाइ इनकम टैक्स की शरह 23 में घटाए 20% कई वही। 32 लाख से 41 लाख आमदनी के टैक्स की शरह 25% करण की तजवीज। 41 लाख कमाइंद 30% इनकम टैक्स भरीदा। 56 से 70 लाख सालानी आमदनी से 32% इनकम टैक्स की तजवीज़।

एनएफसी मां सिधियूं मुंतकलियूं अकेली पंजाब का टिन सूबन का वधीक रकम मिली। विर्च जो की पोल मां सूबन के मजमू तौर से 88 खरब 48 अरब रूपया डेण की तजवीज। रुगो पंजाब के सिधी मुंतकली की मद में 44 खरब रूपया मिलंदा। सिंध के रुगो 22 खरब 7 अरब 18 करोड़ डेण की तजवीज। केपी के 14 खरब 43 अरब 34 करोड़ 7 लख। बलोचिस्तान के 7 खरब 95 अरब 13 करोड़।

इसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलोचिस्तान की अहम तरीन शाहराह N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए की रकम तहरे फहरिस्त पर।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सिंध के माथे का झूमर
0: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: Yeah!

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर

0: एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: मम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: वेतन संयान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज है। मदार तबके पर आय सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है।
1: नए माली साल के बजट में कुछ टैक्सेस में वाद है, कुछ में घटताई। सुपर टैक्स 10 में घटाए 8 सैकड़ों कर छो। सालानो 15 से 50 करोड़ तक आमदनी 6 टैक्स खत्म कर वो। 22 का 32 लाख सालानो कमाइंदर 23 में घटाए 20 सैकड़ों कई वही। 32 का 41 लाख आमदनी टैक्स की शरह 25 सैकड़ों करण की तजवीज। 51 लाख कमाइंदर 29 सैकड़ों इनकम टैक्स भरीदा। 56 का 70 लाख सालानी आमदनी 32 सैकड़ों इनकम टैक्स की तजवीज़।

एनएफसी मां सिधियूं मंतकलियूं अकेले पंजाब खे 3 सूबनि खां वधीक रक़म मिलंदी। विर्थ जोगी पोल सूबनि मां मजमूई तौर ते 88 खरब 48 अरब रूपया ॾियण जी तजवीज़। रुगो पंजाब खे सिधी मंतकली जी मद में 44 खरब रूपया मिलंदा। सिंध खे रुगो 22 खरब 70 अरब 18 किरोड़ ॾियण जी तजवीज़। केपी खे 14 खरब 43 अरब 34 किरोड़ 60 लख ऐं बलूचिस्तान खे 7 खरब 95 अरब 13 करोड़ 40 लख रूपया मिलंदा। बजट में वेसे जोगी पोल जी रक़म हलंदड़ सां साल जे बजट में 6 खरब 46 अरब 67 करोड़ 80 लख रूपया घटि आहे।

जिसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलोचिस्तान की अहम तरीन शाहरा N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए एक

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: Ab aapki khoobsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सिखा ताजगी के साथ ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन पाकिस्तान।
2: आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Training te khas dhyan deno paye vane.

ईरान अमेरिका खिलाफ जंग जो फाते आहे मफामती यादाश्त में तञा तई सही नाहे थी मतन में अञा तब्दीली मुमकिन आहे। लबनान समेत सभी महाजन ते जंग के खात्मे जो ऐलान कबूरी मुआहदे तहत थन्द अमरीकी नाकाबंदी जो खात्मो अमन हुरमस करण अबूरी मुआहदे जो हिस्सो आन। ईरान के परे वजीर अब्बास इराकसी शवाहद इसराइल जड़ा दुश्मन ईरान अमरीका मुआहदे के खिलाफ आन। अमरीका जो धमकियों बंद थन घुर्जन ईरान दबाव आडो न झुकंद असाजी तलवार हमेशा अपने हुरमस से लटकल रही। लबनान में जंग के खात्मे जो मतलब इसराइल जो कब्जो कल इलाक में निकरण है। अबूरी मुआहदों पे कदम आए जैसे उन अमल न किया वो तो एटमी प्रोग्राम से भी गाल न थन्दियों।

अमरीका ईरान अमन मुआहदे की शुरूआती मतन से इतफाक करे वरतो। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमन मुआहदे के मतन से अमरीका ईरान के मुतफ की तस्दीक कदे है तो अमन पैर एतो वेझो न हो जेतो हाने है। अमन मुआहदे के नाकाम करा साजिशी कदें भी कामयाब न थन्दा।

करमपुर में धाड़ेलन जो केटीएन न्यूज रिपोर्टर के घर से हमलो, संदस सोट कतल धाड़ेलन केटीएन न्यूज रिपोर्टर अली जाफरी के घर से हमलो करे सन सोट शाह मुराद जाफरी के कतल कर छो। फायरिंग में रिजब अली जाफरी जख्मी थला, बावजूद पुलिस वाके वरी हंध न पहुंती।

घर में बेज़ुबान जानवरन सां ज़ुल्मनि में घटताई न थी। कलोई में जवाबदारन ॾासीअ खे कुहाड़ियुनि जा वार करे ज़ख़्मी करे छॾियो। घोट बालतो मोरामिया जदल जवाबदारन कुहाड़ियुनि जा वार करे बेज़ुबान ॾासीअ जूं जंगू भञी छॾियूं। ॾासी जे मालिक अशरफ नेड़ियो पारां जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो।

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: DD Cream. Oh, Harniya Josho. Hi, Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 1 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
5: सदर आसिफ जरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज जी वाखाण, दहशतगर्दी जे खात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रखण वारे अज़म जो वरझाओ। ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआहिदे ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास सिराग़ची चयो आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिनि में मुआहिदो थी सघे थो। मुआहिदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशा जीअं आपना हुरमत से लटकंदी रहंदी। ॿिनि सुखनि ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। आपना हुरमत जो इंतज़ाम माज़ी खां मुख़्तलिफ़ हूंदो ऐं जंहिं बाबति तेहरान जो फ़ैसिलो हतमी आहे।

कारमपुर में केटीएन न्यूज के रिपोर्टर के घर धाड़ेलन जो हमलो, सनसोर कतल धाड़ेलन केटीएन न्यूज के रिपोर्टर अली जाफरी के घर से हमलो करे सनसोर शाहमुराद जाफरी के कतल कर फायरिंग में रिजब अली जाफरी जख्मी थी, बावजूद पुलिस इलाके वारे पहुंती।

कराची में रहल कुतन जो राज कुतन जो लाडा वधीक एक शख्स रबी सबक फोत शहर में रबी सबक फोत इन्हनि जो अंग वधीक 14 थी पियो जना अस्पताल इंतज़ामिया मौजूद 45 सालनि जे शख्स खे कुतन डाड़े हो जंहिं वैक्सीन न कराई हुई अॼु रबी सबक फोत थियो आहे शहर में रबी सबक फोत जो अंग वधीक 14 थी वियो आहे उत्तर में बेज़ुबान जानवरनि सां ज़ुल्मनि में घटिताई न थी कलोई में जवाब तरन ॾाचीअ खे कुआरियुनि जा वार करे ज़ख़्मी करे छॾियो ॻोठ बांधो मोरा में अणॼातल जवाब तरन कुआरियुनि जा वार करे बेज़ुबान ॾाचीअ जूं जंगू खणी छॾियूं ॾाची जे मालिक अशरफ नेड़ियो पारां जवाब तरन जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो

रंगवाणी बरसा बाड़ी उड़ी वगे फोत गोट सुबह साधक खोसो में सत साल बिस्मल आशारी उड़ी वगे फोत थी वही गोठान पारा डॉक्टर जो टीमू मोकलण जो मुतालबो। आगड़ी खेरो में माइटन वट घुम आयल बाड़ो गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत ओस्ता मोहम्मद वासी नव साल नवीद शेख गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत थी पाओ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

रहाई आप लोगों तक व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती अब आप लोगों के हाथों में है. तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या ऐसे फायदे हैं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं, बिल्कुल जनाब सब कुछ बताया जाएगा और तफसील के साथ साथ बताया जाएगा. और इसी के साथ साथ जरा आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद भी कहते हैं. तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल सही, इस प्यारे प्रोग्राम में आप लोगों को खुश आमदीद. और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं. सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रामस का नाम तो सुना ही होगा. तो बिल्कुल आपकी खूबसूरती अब आप लोगों के हाथों में है. तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या ऐसे फायदे हैं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं. बिल्कुल जनाब सब कुछ बताया जाएगा और तफसील के साथ साथ बताया जाएगा. और इसी के साथ साथ जरा आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद भी कहते हैं. तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल सही, इस प्यारे से प्रोग्राम खुश आमदीद. और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं. सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रामस का नाम तो सुना ही होगा. तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. तो जितने भी प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोगों को जनाब वेलकम करने के साथ जरा आपने आप हाल चाल बताते जाइए. सो डियर लिसनर्स हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है. और सुनाओ, फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मारी ली. आपको पता है ना कि जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं. तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे तीन बजे तक, यानी कि पूरे दो घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं. तो चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ, इसी मोहब्बतों के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा वाली बातों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे गानों के साथ और बहुत ज्यादा खूबसूरती के राजों के साथ. ओके जी, सो नया दिन है, नई उम्मीदों के साथ साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं. यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान. सो भी अपने काम कीजिए, हमें भी सुनिए, हमको कहेंगे वीनी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्र अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत प्यारी सी नाद के साथ और बहुत प्यारी सी नाद सुनते हैं. उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं. तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं.

ओह जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन आता आपने एंजॉय कर रही के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास लाते जाएंगे। और जनाब आपका प्रोग्राम है तो आपका होना प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लाजमी होता है। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जनाब जरा टॉपिक की जाने वाले हैं, तो आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो आप लोगों को बताते हैं। तो आज मैं आप लोगों से जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि बहुत से लोगों की ये आदत होती ना कि वो खुद से बातें करते हैं और कुछ लोग तो बड़ी संजीदगी वाली बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब जो ना उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं अपने साथ, यानी कि उन्हें खुद समझ नहीं आती कि ये जो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ ये क्या बातें कर रहा हूँ। तो कई मरतबा हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम खुद से बातें कर रहे हैं क्या ये सही होता है या नहीं। लेकिन आज आप मुझे ये बताएंगे कि आप जो है क्या खुद से बातें करते हैं, आप वो हैं जो खुद से बातें करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। अगर आप हमारे साथ साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए और वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो की बिल्कुल लाइव पोस्ट मिलेगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जनाब, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ, दोस्तों को जरा मेंशन करते जाइए, सबको पता चलना चाहिए कि मार्केट में कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिनका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जाहिर सी बात है। तो आप भी जो है ना वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो है ना वो इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं तो वक्त से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा मत किया करिए अपने साथ जुल्म, ये भाई सरासर जुल्म है खुद के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, खूबसूरत को जो है ना वो वैल्यू दिया करें और अपने आप को जो है ना हमेशा आगे रखा करें और अपने चेहरे का खास ख्याल रखा करें। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनका क्या तरीकेकार है और कौन से प्रोडक्ट हैं, ये सारी बातें आप लोगों को इस प्रोग्राम में पता चलती हैं। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम में फन होता है, बातें होती हैं, गाने होते हैं, मजे करते हैं। तो जी आप हमारे साथ मौजूद रहिए और मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं, क्या आप भी वो हैं जो खुद से बातें करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मसरूर अहमद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कराची से मसरूर अहमद कहते हैं RJ मुस्कान जी फायजा का सॉन्ग सुनाइएगा। ओके जी, मैं सुनाने की कोशिश करूंगी। आदिल हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और कहते हैं बेहतरीन पलांद, चुप करे अगते वधण, पाण के बेहतर बनाइण ऐं सब कुछ अलाते छॾे ॾियण, मुनाफ़िक लाइ मौत बराबर आहे। बिल्कुल तमाम सही चयो है। उनका अलावा ही जी फिरोज अली बिरोही हमारे साथ हेलो कहते सो गुड शो, थैंक यू। वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ है, कहते हाय सिद्धराबाद जी, हेलो वफा मीर मुनव्वर भाई। और ये हमारे साथ है गुड गुड गुड गुड, वालेकुम अस्सलाम गुड गुड, कैसा नाम है भाई। अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और जाहिद चांडी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अदी कीअं आयो, अदी तव्हां जी सब मज़े में आता ॿुधाए कीअं आयो। और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं अच्छा प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, बहुत शुक्रिया जी, बस प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, आपकी ये मोहब्बतें हैं और बस आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। और जाकिर हुसैन कोरी हमारे साथ हैं, जाकिर हुसैन कोरी भाई वालेकुम अस्सलाम। और हैं जी मौलाई मुजाहिद बोजदार ठूप चूसल से, मौलाई मुजाहिद बोजदार वालेकुम अस्सलाम। ओके जी मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं, आपने दुआएं दी हैं बहुत शुक्रिया उसके लिए। मीर बेवस हमारे साथ हैं, हेलो हाय, योर शो इज अमेजिंग इन वॉइस स्वीट, थैंक यू। भक्त अली सियाल हमारे साथ हैं, भक्त भाई आपको भी वेलकम करते हैं। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा खुश आयो, हाँ हाँ बिल्कुल प्री पाण आयो आहे पंध करे गर्मी में। अच्छा कहते हैं किशोर भाई टॉपिक मेरा सबसे अच्छा और बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूँ, सबसे पहले मैं खुद से पूछता हूँ, बातें भी करता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, ये अच्छी बात है, खुद से बातें करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये जो आपके अंदर इंसान है ना ये क्या चाहता है और कौन सी बातें ऐसी हैं जो खुद से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये आज जो है ना पूरे प्रोग्राम में बातें हम करेंगे और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप
आपको नंबर बताती हूँ, पूरे प्रोग्राम में नंबर बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप उस नंबर के ऊपर रابطہ करिए और नंबर के ऊपर رابطہ करने के बाद जो है ना आप लोगों ने बता सकें कि आप कहाँ से प्रोग्राम सुनते हैं, किस एरिया में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है ताकि वो अवेलेबल करा सके. तो आप बस इस नंबर के ऊपर رابطہ किया करें. नंबर है जनाब 03151799 0595. ओके जनाब, सो नंबर ही 03151799 0595. जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आप लगाएं और खूबसूरत हो जाएं. ठीक हो गया. और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं. उसके अलावा जनाब यहाँ पर टाइम हुआ जाता है कि हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानेब जाएंगे. शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का है और आप मुझे बताएंगे कि आप भी खुद से बातें करते हैं, बताएं तो जरा, पता तो चले. और मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: सीरियल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जरूर नहीं हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्तेबाल किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: वो अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर ये है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
4: अच्छा।

0: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट लॉस्ट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GAFM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप एंजॉय करें, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और जना प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ आप लोगों से ना सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा कि आप मुझे बताएंगे क्या आप भी खुद से बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो खुद से बातें करते हैं और जो लोग खुद से बातें करते हैं वो क्या, मैंने देखा कि आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं उसमें किसी ने लिखा कि वो जहनी मरीज होते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता ये एक ऐसा फैक्ट है जो मैं आगे जाकर आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग खुद से बातें करते हैं तो क्या वो वाकई जहनी मरीज होते हैं या फिर कुछ और ही वजह होती है। ये जरा रुको, जरा सबर करो वाला सीन बनाते हैं और आप मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं नहीं, और साथ ही साथ क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर नहीं, आपने मुझे ये भी बताना है। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स आते हैं ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये आप दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं, बहुत लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है जनाब इन प्रोडक्ट्स को, और आप लोगों की स्किन के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं प्रोडक्ट्स। तो आप इस्तेमाल करके देखिए और अपने एरिया में अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03159905। ओके जी, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ, जो है ना हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और जनाब किस प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक प्रोग्राम पहुँचाया जा रहा है। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम, कहते बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए कोई भी, चलें जी बिल्कुल कोई भी गाना आपको सुनाते, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारे साथ हैं आरजे सिद्रा, आपका 2 घंटे वाला शो हमारे तमाम गमों दर्दों और तकलीफों और परेशानियों को मिटा देता है। लाड़कना से इमरान अली बिरोही, भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया, ऐसे मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिल जाती है मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये काम आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतें हैं। और गोठ मामन तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तमाम जो शोबिनी नाई साहे सलाम तमाम के, वालेकुम असलम प्यारा भा तमाम के। और इरम कहती है मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ओके जी सोने लाइ ताड़ियूं थी वजन, नहीं सोने लाइ ताड़ियूं वजायो बाबा, छो तो सोनो हाने सोनो थी वो है, सोनो सोनो छो थी आए, छो तो सोनो जो इस्तेमाल करे तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो तुम भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए तुम भी सोना सोना थी वनो। और ये हमारे साथ मौजूद है जनाब, अस्सलाम वालेकुम आरजे डियर सिद्रा, ए बी रिंद फ्रॉम नवाबशाह, मैं खुद से तो बातें नहीं करता लेकिन नींद में रात को बोलने की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मुझे सुबह का चाय और नाश्ता होटल पे करना पड़ता है। क्या मतलब, आप घर वालों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते चलिए हाँ ये जो बीमारी है ये कह सकते हैं कि बहुत जो है ना ये अजीब सी बीमारी है। और ये हमारे साथ हैं कौसर निसा, तेरी जन्नत अच्छा ये पता नहीं क्या लिखा है तुमने, मैं ठीक देखती हूँ मुझे मिल जाएगा ये गाना तो आपके लिए लगा देंगे ठीक है। और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल है तमाजा खुश आयो अदी, ईद का पो यको अमाजो शो सक्रेंट एफएम में नशर न थियो अज हले पयो, वडे शौक सा बुधू पया तवहां जो प्रोग्राम, लाडो इंतजार हुयो, सॉन्ग जरूर प्ले कजो, सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अलीगुल जमाली, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, रशफी आबाद नवाब शाह, प्लीज प्लीज सरमन सिंधी, तो सवार नी है दुखियो सिद्रा आज चले हुआ है, सो मोहब्बतूं प्यारी भांजो हलाईंदा सिंह गानो तवां जे लाइ। और ये कहते हैं इमरान भाई टॉपिक बाजी, हम ख्वाब में बात करते हैं अपने आप से, ख्वाब में बात करते हैं ये कैसे, देखें किस तरह के लोग हमारी दुनिया में पाए जाते हैं वो तो हमें तभी पता चलता है जब मैं आप लोगों से थोड़ी अजीबोगरीब से सवाल पूछ लेती हूँ, समझ रहे आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी से, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ।

एंड 5 जल्दी से ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो सके व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना दम है जनाब व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हुए ये खूबसूरती को वेलकम बोलिए क्योंकि अब आपकी खूबसूरती आपके हाथों में है।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, आप हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताते जाइए। और इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइएगा। और मौलाई मुजाहिद बोजदार क्या कहते हैं, सिडोज ये टॉपिक अल्लाह ना करे जो बंदा खुद से बातें करे वो नफ्सियाती मरीज होता है, क्या बोलती तू माँ, एग्री नहीं कहता आज नगाजा। और मीर बेवस हमारे साथ कहते चलो आओ किसी गाड़ी में बैठकर जर्द पत्तों से ढकी लंबी सड़क पर चाय पीते हैं, आओ जिंदगी जीते हैं। वाह वाह वाह वाह। अच्छा वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासा भाई, खुश आयो मजे में, दर्द दिल हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, कहती चंदा जानी कैसी हैं, वेलकम टू शो, माशाल्लाह आप आ गई। हाँ जी मैं आ गई, देखो वो आ गया आदिल, बिल्कुल आपका गाना लगाते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और वासा भाई कहती अदी सॼो जवाब मां पंहिंजो पाण सां नाहियां ॻाल्हाईंदो, ऐं जेके पंहिंजो पाण सां ॻाल्हाईंदा आहिनि उहे माण्हू उहे छा हूंदा आहिनि। ओके जी, नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद है, हेलो ए एम अंसारी।

असां निभाइण वारो इंसान जेको आहे न उहो घुर्जे, बाकी त ॻाल्हियुनि करण वारा माण्हू त खोड़ हूंदा आहिनि। समझो था। अच्छा नियाज़ हुसैन मलिक भाउ, तव्हांखे प्रोग्राम वणी पई, मोहबतूं तव्हांजी समंद गांगरू हमारे साथ मौजूद है। हेलो साहिल खान, कहते हैं प्लीज खुदा और मोहब्बत का गाना चलाइएगा। जी मैं चलाने की कोशिश करती हूँ। एम अंसारी क्या कहते हैं, सिडो जितना जोर दिला रही है वाइट एश प्रोडक्ट के लिए, उतना जोर अगर आप मुझे फ्री में दिलाती तो अब तक मां भी सोनो थी वा। हाँ ॾियारियूं था बाबा तव्हांखे, ॾियारियूं था, तव्हां थोरो सबर कयो। हज़ार खान जतोई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अदी सिदरा आप कैसी हैं? अदा मां सफ़ा सोणी आहियां। कहते हैं ठीक होंगी, गुड। हाँ जी आप सुना, आपको बहुत मिस किया। गुड शो, लाजवाब, वाइट एश ब्यूटी शो, एंटी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी वेलकम करते हैं आपको। ए मंसारी कहते हैं सॉन्ग प्ले करना, अकेली न बासारी जाया करो, या फिर यो बो कोई, चले मैं देखती हूँ, मिल गया तो लगाते। अनवर भाई अंब खाओ बाबा, खाओ खाओ। हजार भाई कहते हैं और टॉपिक, यस हम करते हैं खुद से बातें, पर सोचते हैं खुद के लिए। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, जो लोग खुद के लिए सोचते हैं वही शायद खुद से बातें करते हैं। दर्द दिल कहते हैं हाँ सच में आ गई। हाँ जी देखो, और बेवस है मीर बेवस, कहते हैं सिद्रा सुनो। अच्छा गाना बोला है आपने, सही सही सही, चले मैं देखती हूँ ये गाना आपका लगाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि हम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर अभी तक आप नहीं कर चुके, यानी कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो भाईजान आप जल्दी कीजिए, कहीं देर हो गई ना तो फिर आप सोचते रह जाएंगे। ऐं सोचींदा आहिनि जेके माण्हू घणो, उन्हनि जा जेके आहे न, उन्हनि जे चेहरे ते बि झुरियूं अची वेंदियूं आहिनि। त मां नथी चाहियां त तव्हांजे चेहरे ते झुरियूं अची वञनि, ऐं तव्हां सोणा सोणा रहो, हमेशा यंग रहो, खूबसूरत रहो, तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी रहे। सब तव्हां डिज़र्व कयो था, तव्हां इस्तेमालु कयो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

अरे किशोर भाई हिते लॻी थो ओजरी वारो क्लिप ॾिठो न क्लिप छा मूं त मतिलब ही वायरल थियण खां पहिरियां सॼो इंटरव्यू ॾिठो ओ प्लीज़ ओजरी खैर सुठी शइ हूंदी आहे पहिरियां न खाईंदी हुयमि पर हाणे खाईंदी आहियां छो त अॻे असां नंढपण में कुझु चीज़ू न खाईंदा हुआसीं वरी थोरा वॾा थींदा आहिनि थोरी उहे चीज़ूं असां खाईंदा हुआसीं मां हाणे हुन फेज़ में हलां पई त जेके चीज़ूं अवल न खाईंदी आहे हाणे उहे सभु खावां थी दबे दिल केतिरी टॉपिक चवंदा हा यस करती हूं मैं खुद से बातें अच्छी बात है जी किया करे

अच्छा इमरान अली बिरोही भाई क्या कहते हैं कि बाजी पांचन सा दिनल जख्म एतरा त गहरा हो साबित थींदियूं इन चीज तो खैर पंहिंजो ख्याल रखो पंहिंजी खूबसूरती जो ख्याल रखो पाण में मगन रहो ऐं पाण जे लाइ तव्हां वठी अचो वाइटिश प्यूरी प्रोडक्ट जी तव्हां इस्तेमाल करे सुहिणा सुहिणा थी वञो। अच्छा यूनिस खोड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं आपको। टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज पे की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आप जनाब हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनती रहिए और एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होती जा रहे हैं।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: शानदार वाले रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो सिर्फ दो दिनों में वाजे आपको अगर नतीजे चाहिए तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो इस्तेमाल करनी है. और जदीद अज्जा से तैयार की गई है जनाब, इसके अंदर हर वो चीज ऐड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन की मदद करने के साथ साथ आप लोगों की स्किन को चमकदार भी बनाए. और अगर आप लोगों की स्किन हमेशा डिहाइड्रेट रहती है तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो हाइड्रेट भी हो जाती है, आप लोगों की स्किन ग्लोइंग भी बन जाती है और आप लोग हमेशा ग्लो करते रहते हैं. तो लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे. डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से पहले आपने डी स्किन फेस वॉश का जो है ना वो भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेले मत लगाइएगा, डी स्किन फेस वॉश साथ में लाजमी लगाएगा. और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है. ये चीजें जो इसके अंदर एड की गई हैं ये क्या ही शानदार चीजें हैं जो कि आप लोगों की स्किन को जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रखती हैं, आपके चेहरे को क्लीन बनाती हैं, आपके चेहरे को जो है ना हमेशा आप लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो नजर आता है और साथ साथ आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी प्यारी हो जाती है, सॉफ्ट क्लीन और क्लियर हो जाती है. तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. बिल्कुल सी डी स्किन फेस वॉश और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये नाइट क्रीम है तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे. तो इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और हमेशा खूबसूरत रहते जाइए क्योंकि आपकी खूबसूरती अब आपके हाथों में है. जो तो मां यू इन लाइ चवंदी आहियां त हाणे ॾिसो न तव्हां अगरि वठी ईंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त तव्हांजे हथ में हूंदी न तव्हांजी खूबसूरती. तो तव्हां वञो बाबा वठी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश ऐं तव्हांजी खूबसूरती तव्हांजे हथ में न बल्कि तव्हांजे चेहरे ते हुजे, समझो था. सो वञो वञो जल्दी जल्दी वठी अचो ऐं तव्हांजे एरिया में नथी मिले तो तुम डायल कर 0315799 0595 नंबर से लाजमी राबो कर जी तुम एरिया में भी अवेलेबल थी वन. उन अलावा अस कॉलिंग वो जो सेगमेंट आ वो स्टार्ट क्यों था. ओके जी, सो अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88. सो हम ये वाली कॉल पिक कर लेते हैं. फर्स्ट कॉलर होगी कॉलर है, देखें कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अलहमदुल्ला, कहिड़े सां सां गॾु मौजूद
1: आहे?
0: फहद भाई, छा ख़ुश आहियो? अलहमदुल्ला, मज़े में. मूंखे ॿुधायो, प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: प्रोग्राम बिल्कुलु ॿुधो पिया.
0: अच्छा, टॉपिक ते तव्हां छा चवण वारा आहियो? चलो मूंखे ॿुधायो, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो आहे हिन महिल ताईं या अञा सोचो था? चलो लाड़काने मां अची तव्हां वठी वञो, पर तव्हां किथे रहंदा आहियो? अच्छा, त उते बि तव्हां अवेलेबल कराए सघो था न? जेको प्रोग्राम में नंबर ॿुधायो हुन ते राबितो करियो. चलो ठीकु आहे, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? चलो जी जी, मैसेज तव्हांजो पढ़ी वठूं था, मिली वियो आहे असांखे. ओके, थैंक यू. ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88. फहद भाई ने कहा कि मैं लाड़काना आऊंगा तो परचेज करूंगा, हमारे यहाँ नहीं मिल रही ये प्रोडक्ट, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए. नेक्स्ट कॉल हम पिक करते, देखते कौन मौजूद है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. कहिड़े से सगट मौजूद है? झंडो वरी वारो भाउ, बिल्कुल यादि आहे. मूंखे ॿुधायो, प्रोग्राम ॿुधो पिया?
2: बिल्कुल, प्रोग्राम तव्हांजो ॿुधूं पिया. हिन रिलेटेड कान कयो आहे, ख़ालिद लाशारी मूंखे फोन कई, प्रोग्राम हले वधी कॉल बि वठे पर कॉल ट्राई कई नी.
0: अच्छा, कॉल ट्राई कई, तव्हांजी लॻी बि वई?
2: बिल्कुल लॻी वई, प्रोग्राम थोरो निंड अची वई, सुठा था निंड अची
0: वई. चलो निंड बि ज़रूरी आहे. मूंखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया? कहिड़ो बाबा, नालो ॿुधायो न, मां सोचां थी त तव्हांखे नालो ख़बर आहे या न?
2: नालो असां यादि आहे, पर निंड चओ न.
0: हा, निंड माउ थी माना डायरेक्ट कॉल कई
2: आहे.
0: चलो, निंड माउ थी कॉल कई, वेसे माण्हू जो दिमाग़ घटि कम कंदो आहे, ईअं न? चलो, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
2: असांजा जेके दोस्त असांजा जेके मन वारा दोस्त आहिनि, उन्हनि खे बिल्कुलु यादि कबो, जेके असां दिलि खां यादि कनि था. असांजो गॾु वेठो आहे शमन काकरी
0: आहे,
2: ऐं हुन खां पोइ काकरी खां गुलाम रसूल परी आहे, ख़ालिद लाचारी आहे, जूबी शहर खां गुलाम रवाल में जेके ॿुधनि था सभिनी सलाम.
0: चलो, थैंक यू. मूंखे लॻो दोस्तनि जा नाला बि विसरी आहे, पर देखे दोस्तनि जा फुल नाला रुगो विसरे थी तव्हां खां ॻाल्हि त वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी ठाह न ठगियूं कंदा आहिनि.

0: Okay, so calling number 0332-1322 and 88. Next call. This is the KSS Agar Majuda. Hello, assalamu alaikum.
1: Walakum
0: salam. Mulal salamadat, KSS Agar Majuda.
1: Vasa bhai,
0: si call lagiya. Vasa bhai, kushayo. Alhamdulillah, program to Vasa bhai, budde pe topic ti chha chandu Vasa bhai. Taan jo loves samjha mana hai to haane budhayo.
1: बिल्कुल अभी जैसे पांच पांच हजार आ जाए ना
0: अच्छा
1: अभी मैं यहाँ बेहोश या दर्बना मार हूँ दाएं
0: दर्बना वो छाव हूँ दोगे
1: अभी को पांच पांच हमारा दर्बना दाएं तो मैं संदेह हो चुका है
0: दर्बना वो पेरों दफो यो लव्स बुदाने तड़े मुखे समझ में गाल ना आई मुखे बुदाने केरा प्रोडक्ट के इस्तेमाल कयो था दर्बना बा
1: मुझे
0: ना इस्तेमाल न किया है ने चलो ताने गोठा में मिलन था कौन चलो रतो तेरे वनो तो ता वठी जो सही आ उते तवा के मिली वेदा चलो थैंक यू बस भाई मैसेज मौजूद है मैंने जिंदगी में पहली बार लव सुना दर्द मुझे बताइएगा और साथ साथ आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88 ओके जी सो नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: सलाम
0: के रस सगड़ा
1: रुस्तम अली पार जो गलाया वो तो पुनो खान पार के सेवन करी
0: वगा ओके रुस्तम भा खुश आयो
1: शुक्र आलाए कानन ताव दायो खुश आयो
0: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम दो प्यार रुस्तम भा अच्छा मुखे बुधायो तो ता जके बुधाया पी प्रोडक्ट जिन जे बारे में त उनन के इस्तेमाल कयो या सिर्फ बुधो था प्रोग्राम
1: प्रोग्राम सा बुधो पे ता जो इस्तेमाल कोन कया त या सा के मिलन कोन था
0: मिलन कोन जा ये था चलो ता अवेलेबल करायो ना जको नंबर बुधाई नी आ प्रोग्राम में उनन के कॉल करी वठो
1: हां प्रोग्राम में जो बुधाना में जो ये यार कोन भोजन खाते करे
0: हाँ वाकई उहे बंद करे छॾियो ने चङो याद कराए हा सही सही सही मोहबतूं आहिनि भाउनि जूं कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा जी जी ओके ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम ॿुधो पिया ओके जी कॉलिंग नंबर 0332-1322-88 जिते जिते अञा ताईं ही प्रोडक्ट अवेलेबल न आहिनि छा चाहे वाई चेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां नंबर डायल कंदा नंबर आहे 0315-799-0595 हिन नंबर तव्हां लास्ट में डायल कजे तव्हांजे एरिया में बि अवेलेबल थी वञनि प्रोडक्ट ठीकु आहे

0: ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई अथव चलो हलायूं था इन गाने के केड़न दोस्तन के याद कंदा तां किरी मणो था ने इन करे गानो हलाया ती न त न हलाया वा
1: आपे सावन दिलो आए खाते दिलो आए शामिल दिलो आए आई क्या जेके बुदंदा
0: ओके के मुझे पापा ओके ओके थैंक यू सो मच ओके जनाब सो नेक्स्ट कॉलर इज सुन केरस से गड मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام
0: کیر اس سے گڈ موجود ہے
1: ابو گڈ گوار پیانا کا وفا میرا مند سے اعلی ابھی
0: ادا خوش ائیو ہاں واقعی واقعی صحیح تھا چو مکھے بدائے پروگرام بدو پیا سان جو اج चलो सुठो कयो सुठो मूंखे ॿुधायो त जेके प्रोडक्ट ॿुधायां थी इन्हनि जे बारे में तव्हां ॿुधो हूंदो अॼु तव्हां वठंदो इस्तेमालु कंदा
1: मां हिन जो ख़ासि शौक़ीन आहियां
0: साबुण त मर्द बि लॻाए सघनि था न क्रीम त चलो मायूं लॻाईंदा आहिनि पर मर्द त साबुण हणी सघनि था न त साबुण बि आहे न

0: Okay.
1: Okay, thank you so much program mein call kari. ओके जी सो असमा लगारी असा सगर मौजूद है मेरे पर खास खास शो बुधे पे असानी सोनी तवां भी असमा कॉल कयो आ त तवां जी लगी वनी आ त लाजमी कॉल कयो आ पर कॉल जका ना जो मां सोचा पई देखड़ी भी छोकरी जी कॉल कोन आई चलो हाने जी कोन कॉल त असा थोड़ो साइड ते रखू था आई टाइम बीते थियो आ त असा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ हलू था उन खां पर वापसी जल्दी मोटी तवां ॾींदासीं थोड़ी थोड़ी रेगुलर जको ना कॉलियूं भी प्रोग्राम में एड कंदासीं जी उन माण्हुनि सां भी कचहरियूं थी सघनि जेके माण्हू वीचारा मैसेज ऐं असांखे कॉमेंट नथा करे सघनि सो प्रोग्राम तव्हां सभिनी जो आहे जंहिंजो नालो आहे वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे तव्हां ताईं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां तव्हां इस्तेमालु कयो पिया सोणा थियो पिया ऐं मां उहो हीअं वञी उहो हीअं मोटावती तव्हां हिते वेठा हुजो मता काॾे विया आहियो सम्झो था

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
1: GFM 91.6।

0: वधिक पाणी पियो ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट।
1: जरा बात तो सुनो। हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं।
2: सखर जी फिजाइन में समायल मोहब्बत जो

0: GA FM 88
1: सिंध की आवाज। प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में ये जनाब फर्क है कि वाई जेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स हैं। ये चीज एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को याद रखने में मेरे ख्याल में जो ना वो आसानी कर सकती है। अगर कभी मैं आप लोगों से पूछूं कि फला फला प्रोडक्ट जो है वो कौन से प्रोडक्ट है, तो आप आसानी से बता सकेंगे भाई वाइटेश वालों के जो ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और डी स्किन में सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है। ओके, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अभी मुझे बताइए। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो वहां पर गोठ में बाबा अवेलेबल करायो।

होती है। ओके जी ओके, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। उनका अलावा अच्छा किशोर भाई, मुख्य न कॉल्स लाइ फोर्स कयो वेंदो आहे त तव्हांखे कॉल्स वठणियूं आहिनि। मूंखे फोर्स न कयो वञे त मां ज़िंदगी में न वठंदो। अला सो ही गानो हलायो अथमि ॾाढो वी आई पी। ज़माना नाज़ुक है, अब पता नहीं ज़माना नाज़ुक है या नहीं, लेकिन ये गाना बड़ा ब्यूटिफुल है, तो हम गाना सुनाइए। और साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, बताइए तो जरा।

डॉक्टर के पास ना जरूर जाइएगा। और ये कहते हैं बाजी सलगानी को इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। लियाकत अली खखरान काना से अदी, अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आपके साथ प्रोग्राम सुन रहा हूँ, वेरी नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच प्यारी भाई। और ऐसे जो लोग

किशोर भाई कहते हा हा असा गजनी ना असा के खबर आ असा वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो बुधू पया न मता ता का गाल विसरी वने तड़ी बुधाइंदी आया अच्छा जदी मा कॉल दे मानन का पुछन या तो अरे वो गजनी थी वेना तड़ी अच्छा हजार भा तुम मोहबतू आए मानो ला टगर बहुत शुक्रिया इंतजार मौत बराबर जो लगे बना ताले जी बिल्कुल एक में भी तन्हा थे सो में भी अकेले हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले मोहम्मद समान भाई आपका बहुत शुक्रिया एम कहते हैं कि टॉपिक पे कहूंगा कि हमें पहले देखना ये है कि हम रहते किस मुल्क में हैं पैदा होते ही हमें वो चीजें मिली एग्जैक्टली शायद आप सही हैं वैसे ऐसी बातें बताई नहीं जाती बंदा नजरों में आ जाता है तो हाइट रखें खुद को अलावा जिको आम थियो आ हाणे तव्हां सो वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात थियण वारी आहे मुंहिंजी सुभाणे वारे प्रोग्राम में 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हां ख़्यालु रखंदा

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो लई।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: KTN News.
1: वफाकी बजट पगारदार सनअतकार एक्सपोर्टर्स लाए आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वाले ममलकती वजीर बिलाल अज़रकियानी चयो त समूरन शोबन तां बार घटाइण जी कोशिश कई आहे। ही बजट पंहिंजो घर ठाहिण जी बजट आहे। घटि पगार खणंदड़नि तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, इन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारनि एक्सपोर्टर्स ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतनि खे हथी मिलण सां गॾोगॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।

0: अपोजिशन जी हुकूमत के गर्जी मामलन के अगते वधण की आज कौमी असेंबली में बजट से गालाइंदे महमूद खान अज़ीज़ई चयो तो गलतियों के सुधारे सकजे तो शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मजबूत करे एक मुआहदो करे तो जी सियासी जमायत हुए जो तंगू न छिकन फेडरेशन सूबन के पैसा दींदी है या वह सूबन का वरता आन पीटीआई बानी से एतरी सख्ती न कर इक्वे के जेलन में विझण से कुछ न थन्द पीटीआई बानी से मुलाकात थन्दी
1: लड़ाई नहीं सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की एक मरतबा नहीं ये सब गवाह है तारीख के और आप गवाह हैं आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़े आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़े पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया लेकिन एज अ शेयर इट इज नेवर टू लेट आए बैठे मैं बातचीत में तैयार
0: मिकबेरो बीहर अपोजिशन के मिसा के मैशत मिसा के जमहूरियत के गाल की दावत नहीं छड़ी कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो सियासत आइन जो पंजो है पर पाकिस्तान आए तो सब आयो असाजा सब भायर आन को भी जड़ो ना पैरियां भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में मिसा के जमहूरियत मिसा के मैशत ला चयो हो पर मुझे खलूस के बदल आज के रद्द कर हाँ दावत दियां तो अचो वेहो अगते वधो चयनी सूबन की जेतरी तरक्की मुझे मकसद आ कानून लागू कर इदारा मुल्क के अमन लाय डी रात कम कन पाया सदन खिदमत कुर्बानी जो एतराफ़ एतराम थे घुर्जे।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात कराने जो मुतालबो कौमी असेंबली में गलाइंदे बैरिस्टर गोहर चो सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम इंदो बजट में गरीबन लाए कुछ भी ना बिजली की कीमत घट थी नई लोडशेडिंग से फर्क पयो है नई बो कुछ सस्तो थी।

0: concept, man. I don't know. Man, I don't know. मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप. मेरा इनसे बहुत भाई वाला ताल्लुक है, बहुत भाई वाला ताल्लुक है. इशारों इशारों में मैं देखता हूं, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहां खड़ा हूं या मैं यहां आना चाहता हूं. खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब.
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ ज अपोजिशन मेंबर्स की आवाजन से दिलचस्प जुमला सनाउल्ला मस्ती खिल के वापस अचण की बतावत दई छी. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के विसारा अपोजिशन लीडर महमूद खान अस्कर के दोस्त करार दिनों. शहबाज शरीफ चो सनाउल्ला मस्ती खेल वापस अचान चाहे तो, पर कुछ मसला अथसि.

एफबीआर मां सिफारशी कल्चर खे ख़तम करे छॾियो आहे। एफबीआर में अरबे रुपियनि जी करप्शन हुई। रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपियनि जो घपलो हो। सूद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो आहे त पघारदार शख़्स शुगर इंडस्ट्री जो बार छो खणे। सुधारा करे खंड जी सनत मां टैक्स चोरी रोकी। 60 अरब रुपया वधीक टैक्स हासिल कयो। माज़ी में मुल्की डिफॉल्ट शर्तूं लॻियूं हुयूं। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तक़ामु आहे जेको अॻिते वधी रहियो आहे।

टैक्स मां 1100 अरब रूपया रुगो कराची मां गॾु थींदा आहिनि। कराची जे रस्तनि जी हालत ख़राब आहे। अरिड़हनि सालनि खां सिंध ते करप्ट हुकूमत क़ाइमु आहे। क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान फारूक सत्तार चयो आहे त वज़ीर आज़म जी तक़रीर में कराची जो ज़िक्र ई नाहे। शहरनि खे सिधी रीति फंड ॾिना वञनि, 2100 अरब सिंध खे ॾिना पिया वञनि, पैसा सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे मेयर्स खे ॾिना वञनि, 26 ऐं 28 तरमीम खे सपोर्ट कयो। असांजे वारे ते रेड लाइन अची वई, मकानीदारनि खे ख़ुदि मुख़्तियार बणाइणो पवंदो। रुगो कराची न पर समूरनि शहरनि खे सिधी रीति फंड ॾिना वञनि।

0: या हे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ पूजा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: 70 अरब रुपये ज़रई बशीरी तां कस्टम ड्यूटी खे ख़त्म कयो आहे। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि। पघारदार तबके खे बि वधीक रिलीफ ॾियण जी कोशिश कई आहे। सूबनि पारां मर्कज़ जी मदद करण ते थोराए तयूं। सूबनि पारां ॾिनल सहूलियतनि 3 सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। वफ़ाक़ी बजट पघारदार सनअतकार ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आणे वारे मुलाकाती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी चयो त सभिनी शोबनि तां बार घटाइण जी कोशिश कई आहे। ही बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़नि जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि एक्सपोर्टर्स ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा। अपोजिशन जी हुकूमत खे गॾिजी मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान जगज़ई चयो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज़ शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु माहिदो करे त जीअं सियासी जमातूं हिक ॿिए जूं टंगूं न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानी ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिक ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझ न थींदो। पीटीआई बानी सां मुलाक़ात थींदी, छा थींदो?
2: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल के जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल के जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़े। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
1: वज़ीर आज़म हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन खे मिसा खे मईशत ऐं मिसा खे जमहूरियत ते ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असांजा सभु भाइर आहिनि। जी हैसियत में मिशियत लाइ चयो हो, पर मुंहिंजे ख़ुलूस ते ॿधल आछ खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो वेहो अॻिते वधो। चइनी सूबनि जी हिकु जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमन लाइ ॾींहुं राति कम करे रहिया आहिनि। सदन ख़िदमतनि ऐं क़ुर्बानीनि जो एतराफ़ ऐं एतराम थियणु घुर्जे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी सां मुलाकात करण जो मुतालबो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सियासी इस्तेकाम सां ही मुआशी इस्तेकाम ईंदो। बजट में ग़रीबनि लाइ कुझ बि न आहे, न बिजली जी क़ीमत घटि थी, न ई लोड शेडिंग ते फ़र्क़ पियो आहे, न ॿियो कुझ सस्तो थींदो।
2: मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों इशारों में मैं देखता हूं, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहां खड़ा हूं या मैं यहां आना चाहता हूं। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब है।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जा अपोज़िशन मेंबर जे आवाज़नि ते दिलचस्प जुमिला। सनाउल्लाह मस्ती खेल खे वापसि अचण जी बि दावत ॾेई छॾी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी बि सारा। अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान चकज़ई खे बि दुरुस्त करार ॾिनो। शहबाज़ शरीफ चयो त सनाउल्लाह मस्ती खेल वापसि अचणु चाहे थो, पर कुझु मसला अथसि। ایف پی آر ماں سفارشی کلچر کے ختم کرے چڈی ہے. ایف پی آر میں اربیں روپئے کی کرپشن ہوئی تو شوگر انڈسٹری میں 60 ارب روپئے جو گھپلو ہو. سد سبا وارے وفاقی وزیر تعالیٰ تارڑ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں پگھاردار شخص شوگر انڈسٹری جو بار چھو کھنے سدھارا کرے کھنڈ کی صنعت میں ٹیکس چوری روکے 60 ارب ٹیکس حاصل کیو. ماضی میں ملکی ڈیفالٹ تے شرطوں لگی ہوئیں موجودہ حکومت معاشی استحکام آندو جو کو اگتے ودھی رہو ہے.
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: करप्ट हुकूमत कायम आहे, कौमी असेंबली में बजट

0: तमाम घणा इन्हनि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि क्वालिफाई थियल आहिनि। त एडवोकेट साहब जी तरफ़ हलंदासीं। शहबाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम ऐं वेलकम टू द स्टूडियो।
1: वालेकुम सलाम बाबर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम वंस अगेन। एंड आई एम वेटिंग फॉर होल वीक एंड आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड कॉल दैट यू विल कॉल मी के नेक्स्ट प्रोग्राम तव्हां सां गॾु करणो आहे।
0: यस सर, असांजी पाणी
1: I do wait for whole year, for whole week.
0: Whole week.
1: तव्हां ज़रूरु मूंखे इनवाइट कंदो।
0: बिल्कुल, ख़्वाहिश हूंदी आहे तव्हां असां सां हर वीक, अगरि हर वीक न त ॿिए वीक लाज़मी।
1: थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ योर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मी दैट यू आर गिविंग मी इन योर प्रोग्राम।
0: सर, अॼु जो असांजो टॉपिक आहे इलीगल डिस्पोज़िशन। सो इलीगल डिस्पोज़िशन जी तरफ़ अचण खां पहिरियां पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 24
2: फारूक, मोबाइल नंबर 0315-68299।
1: आउट क्लास हूंदा आहिनि, हे बि उन्हनि टॉपिकनि मां हिकिड़ो तमामु सुठो टॉपिक तव्हां खणी आया
0: आहियो,
1: जिते डिस्कशन कंदासीं इनशाला। फर्दर जेको आर्टिकल जे हिसाब सां पुछियो, हाणे आर्टिकल 23 तव्हां पाण ई अलहमदुल्ला सुठो ब्रीफ करे वियो, सुठो ई ॿुधायो वियो। नो नीड टू रिपीट इट हियर,
0: बट असां
1: इन में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए रहा के एवरी सिटीज़न। हाणे सिटीज़न केरा? कॉन्स्टिट्यूशन 1973 मुताबिक़, ॾिसो इन में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए रहा के एवरी सिटीज़न। हाणे सिटीज़न केरा? कॉन्स्टिट्यूशन 1973 मुताबिक़ सिटीज़न उहो माण्हू आहे जंहिंखे नेशनैलिटी हुजे पंहिंजे मुल्क जी। सपोज़ हिकिड़ो पाकिस्तानी आहे, मां या सबर, मां NIC होल्ड कयां थो पियो, मुंहिंजी पैदाइश हितां जी आहे, मुंहिंजे वॾनि जी पैदाइश हितां जी आहे ऐं मां पाकिस्तानी आहियां। या इन खां अलावा कुझु अहिड़ा माण्हू जेके थ्रू हिकिड़ो स्पेसिफिक पीरियड खां वठी करे हिन वक़्तु पाकिस्तान में रहनि था ऐं उन पीरियड जे करे, उन पर्टिकुलर पीरियड जे करे हुननि पाकिस्तान जी नेशनैलिटी एक्वायर करे छॾी आहे, या ड्यूअल नेशनैलिटी जेके हूंदा आहिनि, माना हिकिड़ी ॿिए मुल्क जी बि नेशनैलिटी रखंदा आहिनि, पंहिंजे मुल्क जी बि नेशनैलिटी रखंदा आहिनि। हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए रहा उहो माण्हू जेको पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखे, हुनखे हक़ आहे, राइट आहे प्रॉपर्टी वठण जो, प्रॉपर्टी खे डिस्पोज ऑफ करण जो, प्रॉपर्टी खे अक्वायर करण जो ऐं प्रॉपर्टी खे सेल आउट करण जो। आर्टिकल 23 असांखे उहो सॼी लिबर्टी ॾिए थी

0: मां या प्रॉपर्टी मां बेदखल करण खे ही इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट चवंदा सिंपल ज़बान में।
1: अच्छा, इन खे थोरो एग्ज़ाम्पल अगरि तव्हां
0: एग्ज़ाम्पल मतिलबु

0: लागू थे तो
1: इन के जमल एक्सटेंशन थ्रू आउट पाकिस्तान की जेतरी भी हद पाकिस्तान जैसा भी माना पाकिस्तान की डोमेन वने थी पई तेस पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान में लागू थे
0: ऑल राइट सेक्शन टू मैंने जो डेफिनेशन साइन प्रॉपर्टी थी वो ऑनर थी वो एंड इलीगल पोजीशन ऑक्यूपायर इन
2: भी मोरो की है सुनते

0: पोड़ कयनि, जॻह भञी छॾियनि, जॻह जो सामान भञी छॾियनि, इन द एंड हुननि खे सज़ा मिली त कोर्ट हुन जे मथो 544 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जे हिसाब सां इन्हनि ते कंपनसेशन बि लागू करे छॾी आहे। हाणे तव्हां जेको बि तव्हां इंजरी ॾिनी उहो तव्हां भराए ॾींदो।
1: देट
0: इज़ द रीज़न की हिनखे बैक बोन चयो वेंदो, छो की हिन में पनिशमेंट बि आहे ऐं हिन में मेन इनग्रीडियंट्स ई ॿुधाया विया आहिनि त इलीगल डिस्पोज़िशन तॾहिं लागू थींदो जॾहिं इहे चार इनग्रीडियंट्स अवेलेबल हूंदा।
1: अच्छा साईं, हिन ते थोरो असां वाज़ी तौर ते अगरि ॻाल्हायूं इलीगल डिस्पोज़िस ते, प्रॉपर्टी जेकी आहे, जेका प्रॉपर्टी आहे उन ते कीअं इलीगल डिस्पोज़िशन थिए पई? हिकु त तव्हां मिसाल ॾिनी ऑफिस जी, ठीकु आहे, प्लॉट्स बि माण्हुनि जा हूंदा आहिनि, प्लॉट ते बि जेको आहे काफ़ी अर्सो अगरि उहो खाली रहे पियो, माण्हू अॾावत करणु शुरू कंदा आहिनि, या कुझु गवर्नमेंट जा प्लॉट हूंदा आहिनि जिते कुझु लैंड माफ़िया खणी उहा प्लॉट कब्ज़ा करे वठंदी आहे, इन ते थोरी असांखे वज़ाहत सां समुझाईंदा।
0: पहिरों त सवाल इहो हुजणु खपे त इलीगल डिस्पोज़िशन खां अॻु में कहिड़ा कानून हुया या कहिड़ा सेक्शन हुया जंहिंजे करे जेको आहे न इलीगल डिस्पोज़िशन

0: अचण जी ज़रूरत
1: जरूरी भाई जी।
0: असां खे थोरो बैकग्राउंड में पोइते वञणो पवंदो। पाकिस्तान पीनल कोड में कुझु सेक्शन आहिनि 441 खां वठी करे 445 ताईं, पीपीसी क्रिमिनल ट्रेस पास। अगरि तव्हां डेफिनेशन खणंदो क्रिमिनल ट्रेस पास जी, क्रिमिनल ट्रेस पास जी एग्ज़ेक्ट सेम डेफिनेशन आहे जेकी इलीगल डिस्पोज़िशन जी आहे। फ़र्क़ु सिर्फ़ हिकिड़ो आहे त उन में माण्हू फोर्सफुली घर में दाख़िल थियनि था पिया, घर में दाख़िल थी करे तोड़ फोड़ करनि था, तोड़ फोड़ करे असॉल्ट करनि था, क्रिमिनल तरीक़े सां माण्हू खे इंजरी ॾियनि था पिया, ठीकु आहे, ऐं उन जॻह खे ऑक्यूपाई करे था छॾनि। पहिरियों इहो हूंदो हुयो। हाणे लफ़्ज़ इस्तेमाल थी वियो माना लैंड माफ़िया, लैंड ग्रेबर, प्रॉपर्टी ग्रेबर। हाणे हिन खे डिस्टिंग्विश कीअं कजे? ईअं जेकर तव्हां अगरि एग्रीकल्चर अगरि एग्रीकल्चर ले

0: लैंड आ जे तव्हां चओ था त एग्रीकल्चर लैंड में 145 किलोमीटर प्रोसीजर कोड जे हिसाब सां अगरि कोई धुलियूं
1: पहचान
2: हैदराबाद दादू जेकबाबाद नवाब शाह क्वेटा एंड चित्राल You're listening to the Hot FM Network.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: उनके कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
4: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
5: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू तू कर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजम रहीम कर रखा नियत है सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी जी एफएम 88 एफएम
3: हम के जिंदगी के दो लड़ते थे
4: काके बे थे
5: पानी आंसू नहीं हो।

0: किया है संत जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी
1: मेरी जिंदगी है तू, देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: या हे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती अम्मी, मैं मनोज उनकी जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मुझको थोड़ी सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर न्यूज।
1: आने पे दावत सूबर जी हिक जेतरी तरक्की मुझो मकसद आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जी अमुन लाए दिन रात कम करे रहा आहिन। संदन खिदमतुन ऐं कुर्बानिन जो एतराफ़ ऐं एहतराम थियण घुर्जे।

अपोजिशन जी बि हुकूमत खे गॾिजी मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान अचकज़ई जो चवणो हो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिक मुआदो करे त जीअं सियासी जमायतूं हिक ॿिए जूं टंगू न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानीअ ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिक ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझ न थींदो। पीटीआई बानीअ सां मुलाक़ात थींदे छा थींदो?

करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त ईरान अमरीका अमुन मुआदे जा नुक़्ता 24 कलाकनि में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमरीका अमुन मुआदे लाइ अॻ खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआदे डिजिटल सहियुनि लाइ तयारियूं करे पियो। पूरो यकीन आहे त मुआदो ख़िते में जटादार अमुन जो मज़बूत बुनियाद बणिजंदो।

0: ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआदे ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखची जो चवण आहे त अमरीका सां ॾींह ॿिन में मुआदो थी सघे थो। मुआदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशा जीअं आबनाए हुर्मुज़ आहे, जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं। आबनाए हुर्मुज़ जो इंतज़ाम माज़ीअ खां सूबनि पारां मर्कज़ जी मदद करण ते थोरायता आहियूं। इहा सहूलियत ईंदड़ टिनि सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर जो चवण हो त बजट में 70 अरब रूपियनि जी वाधू सब्सिडी ऐं पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो आहे। ज़रई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी लागू कई आहे। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाठा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे की करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इंतजार कर रहे वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब शेख तमीम बिन हमद अल सानिया जो फोन रब्त वजीर आजम पाकिस्तान के अमन कोशिश की हिमायत से कतरी हम मनसब जा थोरा मंझा वजीर आजम ऑफिस मौजिब कतरी अमीर वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भेटा पेश कई कतरी वजीर आजम जो चवण हो तो सफारती कोशिश के अगत बधाण में शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल अहम किरदार अदा कर उम्मीद अड़न कदम से जटादार अमुन कायम वजीर आजम जो चवण हो तो लागापियल धुरन विच में जल्द अमुन मुआदो भी

सूबन पारां मर्कज़ जी मदद करण ते थोरायता आहियूं। इहा सहूलियत ईंदड़ 3 सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर जो वधीक चवणो हो त बजट में 70 अरब रुपियनि जी वाधू सब्सिडी ऐं पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो आहे। ज़री मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी ख़तम कई। तामीराती शोबे तांबे टैक्स घटाया आहिनि।

वफाकी बजट पघारदार तबके सनतकारन एक्सपोर्टर्स लाए आए पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाने वाले मुमलकती वजीर बिलाल अजहर कयानी जो चवण हो तो समूरन शोबन तां बार घटाने की कोशिश कई है। ये बजट पैंजो घर ठाहिंदड़ जी बजट है। घट पघार खणंदड़न तां गुजरियल साल ही टैक्स कटायो हो, इन भेरे भी रिलीफ दिनो है। व्यापारन एक्सपोर्टर ए शिपिंग इंडस्ट्रीज तां भी टैक्स हटायो वियो है। बजट से सनतुन के हथी मिलने से गड रोजगार जरिया भी पैदा थींदा।

0: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून। और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की, तो एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बचाव लीड द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ शेर इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
1: वजीर आजम एक बीहर अपोजिशन के मिसा के मैशियत मिसा के जमहूरियत गाल दावत दे छी। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम चवण हो तो सियासत ए नजरियो सभी जो पैंजो है, पर पाकिस्तान आए तो सब आयु असाजा सब भायर आन कुछ जेड़ो ना है। पेरी भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में मिसा के जमहूरियत मिसा के मैशियत लाय चयो हो, पर मुझे खलूस से बदल अच्छा के रद्द कर वो। हाने भी दावत दिया तो अचो वेहो अगते वधो। चैनी सूबन की एक जेरी तरक्की मुझो मकसद है। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क की अमुन लाय दी रात कम कर रहा है। सदन खिदमतुन ए कुर्बानी जो एतराफ़ ए एतराम थे घुर्जे।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात कराने जो मुतालबो। कौमी असेंबली में गालंदे बैरिस्टर गोहर चयो तो सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम ही दो। बजट में गरीबन लाए कुछ भी ना है, न बिजली की कीमत हट थी, न ही वरी लोड शेडिंग से फर्क पयो है, न बो कुछ सस्तो थींदो।

0: Ah, que merda, minha. Merda, minha. मैं तो फिर बढ़ा दूंगा आप भी आ जाए ना अपने घर आ जाए आप मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है इशारों इशारों में मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि मैं मजबूरी ना करूँ या मैं यहां ना खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ जा अपोजिशन मेंबर्स की आवाजन ते दिलचस्प जुमला सनाउला मस्ती खेल के वापस अचण की भी दावत दई छी पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बिसारा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के बे दोस्त करार दिनो शहबाज शरीफ जो चवण हो तो सनाउला मस्ती खेल वापस अचण चाहे तो पर कुछ मसला अथस
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN News

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लगी
2: सिंक है GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमेरिका अमुन मुआहिदो 24 कलाकन में फाइनल थियण जो इम्कान जाहिर करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण हो त ईरान अमेरिका अमुन मुआहिदे जा नुक़्ता 24 कलाकन में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमेरिका अमुन मुआहिदे लाइ अॻु खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमेरिका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआहिदे ते डिजिटल सयुनि लाइ तयारियूं करे वरितियूं आहिनि। पूरो यकीन आहे त मुआहिदो खिते में जटादार अमन जो बुनियादु विझंदो। वज़ीर आज़म जो ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प रीट्वीट करे छॾियो। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी जो चवण हो त ईरान अमरीका मुआहिदे ते डिजिटली सयुनि वारी तक़रीब सुभाणे थींदी।
2: अमरीका विच में मुआहिदे ते सयूं सुभाणे न पियूं थियनि पर ईंदड़ ॾींहं में मुआहिदे ते सयुनि वारो इम्कान नथो करे सघे। ईरान जे परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो बयान। इस्माइल बकाई चयो आहे त मफ़ामती यादाश्तनामे ते सही लाइ दुरुस्त वक़्त जो इंतज़ारु करणु घुर्जे। जंग जे ख़ात्मे ते ध्यानु ॾियण वारे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ते अमल कयो पियो वञे। फैसलो कयो वियो आहे हाणे ईरान जे एटमी मामले ते ॻाल्हियूं नथी थियूं। मुआहिदे लाइ सही वक़्त जो इंतज़ारु करणु घुर्जे।

0: वफाकी बजट पगारदार तबके सनतकारन ए एक्सपोर्टर्स लाए आए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाने वाले मुल्कती वजीर बिलाल अज़रकियानी चयो त समूरन शोबन तां बार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीअ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़नि जी बजट आहे। घट पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारनि एक्सपोर्टर ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतुनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।
1: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़े। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट, आए बैठे मैं बातचीत में तैयार हूं।
2: वज़ीर आज़म एक भेरो बीहर अपोजिशन के मिसा के मईशत मिसा के जमहूरियत के गाल की दावत दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो है पर पाकिस्तान आए तो सब आयु अस जा सब भाइर आहिनि, को बि जहिड़ो न आहे। पहिरीं बि अपोजिशन लीडर जी हैसियत में मिसा खे जमहूरियत ऐं मिसा खे मईशत ताईं चयो हो, पर मुंहिंजे ख़ुलूस ते बदल आच खे रद कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो विहो अॻिते वधो। चइनी सूबनि जे हिक जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमन लाइ ॾींहुं राति कम संदनि ख़िदमतनि ऐं क़ुर्बानीनि जो इतराफ़ ऐं एतराम थियणु घुर्जे।
0: अपोजिशन जी बेहकू मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। कौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान अचकज़ई जो चवण हो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज़ शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु मुआदो करे त जीअं सियासी जमायतूं हिक ॿिए जूं टंगूं न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी बन खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानीअ ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिक ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझ बि न थींदो।
2: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी सां मुलाकात कराइण जो मुतालबो। कौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सियासी इस्तेकाम सां ई माशी इस्तेकाम ईंदो। बजट में ग़रीबनि लाइ कुझ बि न आहे, न बिजली जी क़ीमत घटि थी, न ई लोड शेडिंग ते फ़र्क़ु पियो आहे, न ॿियो कुझ सस्तो थींदो।
1: मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाई वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूं, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहां खड़ा हूं या मैं यहां आना चाहता हूं। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जा अपोजिशन मेंबर्स जी आवाज़नि ते दिलचस्प जुमला। सनाउला मस्ती खेल के वापस अचण जी भी दावत ॾेई छॾी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी बि सहारा। अपोजिशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई खे बि दोस्त करार ॾिनो। शहबाज़ शरीफ जो चवण हो त सनाउला मस्ती खेल वापस अचण चाहे थो पर कुझ मसला अथसि।
2: एफबीआर मां सिफारशी कल्चर खे ख़तम करे छॾियो आहे। एफबीआर में अरबे रुपियनि जी करप्शन हुई। रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपियनि जो घपलो हो। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारन पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो आहे त पघारदार शख़्स शुगर इंडस्ट्री जो वार छो खणे। सुधारा करे खंड जे सनत मां टैक्स चोरी रोके 60 अरब टैक्स हासिल कयो। माज़ी में मुल्की डिफॉल्ट ते शर्तूं लॻियूं हुयूं, मौजूदा हुकूमत माशी सकाम आंदो जेको अॻिते वधी रहियो आहे।
0: ₹1300 अरब टैक्स मां 1100 अरब रुपया रुगो कराचीअ मां घर थींदा आहिनि। कराचीअ जे रस्तनि जी हालत इंतिहाई ख़राब आहे। 8 सालनि खां सिंध ते करप्ट हुकूमत क़ाइमु आहे।

0: क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान फारूक सतारा जो चवण हो त वज़ीर आज़म जी तकरीर में कराचीअ जो ज़िक्र ई शामिल न हो। शहरनि खे सिधी रीत फंड ॾिना वञनि, 2100 अरब सिंध खे ॾिना पिया वञनि, पैसा सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जी मेयर्स खे ॾिना वञनि, 26वीं ऐं 28वीं आईनी तरमीम खे सपोर्ट कयो, असांजी वारे ते रेड लाइन अची वई, मकानी इदारनि खे ख़ुदि मुख़्तियार बणाइणो पवंदो, रुगो कराची न पर समूरनि शहरनि खे सिधी रीत फंड ॾिना वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: Kurbanchi.
1: Hyderabad.
0: Dadu.
1: Dardana.
0: Mirpur Sahib.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पुलिस बुलावी जवाबदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे बस वाला नोटिस बैठा।

मेहड़ी मासूम उजाला परवीन सोलंगे की अगवा के ब महीना मुकम्मल संदस अमर रोई रोई हाल विञाए छड़िया। ब महीना अग मेहड़ की मैसर सेंदल पाड़े में अगवा थियल मासूम नींगरी उजाला की बाजियाबी लाए पुलिस रुगो कूड़न दिलासन आसरन का सवाए को भी अमली कदम न खयो। बिन वरन की मासूम निंगरी उजाला की बाजियाबी लाए वारसन से गड शहरी बे बिन महीन का सरापा एहतजाज बनल मासूम नींगरी के बाजियाब करण जो मुतालबो।

इनकार करते घर कढ़ी छो है पुट कारी करे मारे छो।